0: 松懈三嘛，暖散了，是不是？
1: 侬三郎西北松懈地，感情龙城去声音出不出音呢？你让朋友李晨去贴纸安装谈谈的心，晨晨记得 Q 音去第五节语节，李晨拿水管啤酒，如果能个啤酒个水就蛮塞的。你路线地路最难的呀，路对怎么？若不仔细念明白，侬三郎西北松懈地，别接近这几日下，忙些几年从就都难叫熟悉多了。
0: 李晨，侬了？你第一个呢？他见不见不见真了？可能给松开地呢嘞，好像给念不懂啊。其实当个难去，年前也能按去。给其现状忙不起给呢你们能懂啊空诉线的呀其实我就现状那么很给去提领你钱拿了车这续被空诉线三百多三了是不是你们能够批给我个修音了
1: 你要不你的身体贴着安产来我也估计出夜间来炖炖骨坦出夜送我你出出出夜你过来我暗暗坦出夜你给出炖炖建议么坦趁趁基地给名了 CTV 歌声传情四个月当年心脏与卫视加息被空音期第五句节里现在学过皮给我那个修音
0: 下面来到我这新来连送些地的文章天气现在那么天天去写吧铁童汉来了这对那转来修过音了来公干不死啊
2: 兄弟们，兄弟们，今天见到这些了，舍不得嘞。看上满街有的特别印象了，我搞出兴趣。他是啥人？你们听过啥人呢？开发教育，专门的学校。
0: 那是老老啊，你们听住啦。
2: 老
0: 老老三了，是呗？送些的，给人家提点的证据，结束批资源呢。
2: 当多专门去这么大，专门听着见到这些了，路线的爱突破升级大，听不见这个，但在路线上了，他。सब जो कसु कल दी खेपते और एंडिंग डेस गुडी नंबर ता जे जे दुला जे ता ओटे सिला जे की तुमला रा जे तें दुला जे यंग जी छला लुंगडी उते ले सु यंग ल कुले खस थचे ना शु म से तें जो मिन तें जो नि दी लुंगडी ले गु नि आ फनि दिंदे चि नन जे सिम दो मन जो जो खते ना बा नि सिम दो मन जो छ छ छ जे किना जो कुले खस थचे ना शु गे ला
0: ने से लो लो अ
2: ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང ང Chara tunne langwa matamba akanga te sugutte tan yumbe kretta chimzan chimdu yumbe teshte leju gila.
0: Nese lolo a?
2: Ami nge kenlan kinan zopetwe me mil mogo tunge shingle mogo tsewa mili zinji sile kom mima don suog tongbari. A chala pa tu tungu jemne soya or mil soa ma kange kinji naro shi gila.
0: Nese?
2: A kange minna ta chidi timdi nyenta kukule kasuri ene. Kinan zi sumlu xie di xian zi li zin li tu da kusul tu jia na a la.
0: No la a?
2: Na di na li ya du lan li ya chilo li ten kun jim jia yo.
0: Le xin tu jia na la?
2: Lo an len jia sum gu da ni su xiu a.
0: No la xie di jia wo?
2: Lo.
0: No. Lo yin xie mo kam san?
3: Kam san gila.
0: No chen ha shu na?
3: Su na dobla xin gila.
0: Le xin xie ma kene gyun ba?
3: Zi zong jia da xiong xiong ni.
0: Nese lo. Nese nan chiji shu we sung xie nor san lan xie bide kirang ge so pyo a yi nan?
3: Sung xie din dang thok pa resa le kwe li zan to kyo ba ge ten tu la kirang dang ge ki tuma la xie ba dudu nang ge tawa ta xila jie sung le kwe kyo ke la.
0: Nese lo, tachi.
3: Tina di ta jeb di ta ge boi tang san bu tu jun gya za xiong xiang liang da chong zog shu we tina ganji pen jie yong le kwe kyo ke la.
0: Nese.
3: Tita jeb di tina ting tu kang ga tu kwe xie ni nang xie we ta ge zong bu ta xie bin to le kwe kyo yi la.
0: Nese lo.
3: Tene nyanya konyak le, tetengar le yakto yakto yung ta shimintu shikyo ke la.
0: No, tochi.
3: Nasi gyal, tene sungshe tang tukit rol.
0: No, sungshe khan shi zhina yu na.
3: Kele, tema jenza la sungshe sapa nusa la sara yuwa ba ngang titu titi.
0: Tanda shi zhi shubhe sungshe di yin.
3: Alo, na gyal, di tumbu titang.
0: Oji, nese la.
3: Nese la. Kepu chang la la.